मेरा, मेरे हिरदे च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इना जानना कि तेनू बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तेनू जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है। जे साडे वालों गिणिया जावे ते फिर तां बड़ा मुश्किल है। जे मालक तेनू प्रवान करन वास्ते, तेनू प्रवान होन वास्ते, तेनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वाल वेखा ना, मेरे कोल रूप है ना, मेरे कोल अखां ने ना, अखां विच ओह नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके, ना मेरे कोल रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके, ना मेरे कोलो जबान है जिहदे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सकां। बल्कि मेरी तां सुरत दे, मेरी करनी दे हाथ पैर भी सिद्धे नहीं। कुल हीन कह लो, गुण हीन कह लो, ते जिहदी कुल भी कोई ना होवे, जिहदा गुण भी कोई ना होवे, ओहदी शोभा भी कहदी। ऐसी अवस्था च मैं तेनू प्राप्त किवें होवां, तेनू प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां जद ए जानना कि तेरा बिरद बख्श लैण वाला है, तेरा सुभाव तेरा नेम बख्श लैण दा है, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा है।

हंस हंस के इतने तसीहे ता बर्दाश्त कर ले। जालम ने बहुत चाया के किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अग्नि भड़क उठे।

तेरी रजा जिवें है वो परवान है। ओदे विच मैनू कोई हक नहीं के मैं कुछ हुक्म अदूली करा। ये एक संसार दे सामने नमूना पेश कीता है कि सिदक तो नहीं डोलना जालम भावें जिन्ना मर्जी जुलम करदा। आखिर जित नाम सिमरन और सच दी हक दी हुंदी है। हजूर गुरु नानक पातशाह जी का फरमान है, कूड़ निखुटे नानका ओड़क सच रही। ये झूठ दे बदल ये सदा अस्थिर नहीं रहिंदे, लेकिन सच दी आवाज सदियां तक बल्कि जुगां जुगांतरां तक बुलंद रहिंदी है। और उस सच दी रोशनी दे विच अनेकां ही राही उन्हां नूं मार्गदर्शन प्राप्त हुंदा है। तो धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी अकाल पुरख वाहिगुरु दे भाणे विच किवें रहना है।

तसीहे दे दे के शहीद करन दा इशारा मिल चुकया सी। ओ चंदू अपने वालों उसने कोई कसर बाकी नहीं छड़ी। प्रभु परमात्मा दा खौफ भुल गया, अपना आप भुल गया, सिर्फ एक तशद्दद करना ही उसके सामने है। कई तो यह भी कहते ने कि उसने बदला लिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी के साहबजादे गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जदों चंदू दे भेजे हुए दूतां ने रिश्ता कर दिता और आके दसिया कि गुरु नानक दी गद्दी दे वारिस गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे सहजादे साहिबजादे हरगोबिंद साहिब पातशाह उन्हां नूं रिश्ता दे आए हां, तां हंकार विच हौमें विच मतिया होया ए चंदू, क्योंकि सरकारे दरबारे ये नौकरी करदा सी, इनू बड़ा चंगा दीवान दा रुतबा हासिल सी। हंकार विच बोलिया, तुसी चुबारे दी इट मोरी नू ला आए हो, भाओ अपने आप नू उसने बहुत वड्डा दसिया ते गुरु घर नू एक बहुत नीवा दर्शाया, जिसनू सुन के कहंदे ने संगतां ने बड़ा रोस कीता और संगत ने आखिया कि गुरु अर्जन देव पातशाह जी हो आप जी ने यह रिश्ता नहीं रहना, वापस कर दिओ, मोड़ दिओ रिश्ता।

अंतर आत्मा दे नाल हुण मैं परमात्मा दे पिछे इंज लग पई आ जिवें कोई ढोल वजा के निशान लैके उसके मगर पैंदे। इसे तरह मैं उस निरंकार दे पिछे हुण उहदे नाल मिल पई आ। मिलो गोपाल निशान बजाई, मैं दुनिया की उस्तत निंदा तो उठ के दुनिया की परवाह ना करती हुई उसके मगर लग पई हाँ। हुण मैनू वो दाता मिल पिया, मैनू किसी की परवाह नहीं। भगत जी कहते ने

परमेश्वर जिस दे चरना कमलां विच दास ने अर्ज करनी है, अरदास करनी। अरदास दा मकसद एहो ही है कि आउन वाला जो समा है मनुख उसको जानू नहीं कि आउन वाले समय दे विच की हो सकता है, सुख मिल सकता है या दुख मिल सकता है, मगर जो परमेश्वर है, जो साडा साई है, साडा खसम है, उसनू ज्ञान है, वो जानता है कि आने वाला समा कैसा है। ते मनुख उस शक्तिमान परमात्मा दे चरना कमलां विच ये बेनती करता है कि है मेरे साहिब, मेरा आउन वाला जो समा है उस दे विच मैनू सुख प्राप्त हो, मैं इसे करके तेरे चरना कमलां विच अरदास करदा। ते साहिब फरमाउंदे हन कि ऐ गुरसिख तू उस दी रहमत दा पात्र बन, क्यों जो ओ तेरे ते मेहर कर देवे ते तेरे सारे कारज रास हो जाणगे। मेहर करे जिस मेहरवान ता कारज आवे रास, साहिबां दा फरमान।

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा ये थाल है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार करन हित गुरु नानक ने कलयुगी जीवां नू दित्ती है मेर कीती है पातशाह ने आख्या भाई कोई सुने कोई गावे कोई उपदेश करे किसी भी जाति का होवे कोई नीच कोई ऊंच नहीं बल्कि सारे का सत्कार है।

बाबा नामदेव जी नाम जपद्या जपद्या ऐसी बिरती आप दी ब्रह्म ज्ञानिया दी अवस्था प्राप्त हुई के ठाकरां दे इशनान करन लई जल परन गए ते मन विच ख्याल आया भई 42 लख जी जल में होते बीठल पैदा काहे करो। 42 लख जून जल विच है, 42 लख जून इस तरत आकाश ते है, हुन बीठल नू मैं वखरा किवें भोग लवावां। हे भगवान, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, जिथे किथे तू ही तू है, कोई दूसरा नजर ही नहीं आ।

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी आरंभता और बख्शिश सतगुरु जी दी इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लैं के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है एदे विच कला है वाजे पंज शब्द घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया के विद्वान और कलाकार सूझ वाले बैठे हो गुरु की कला देखिए राग सारंग विच और आप जी चंगी तरह समझ के इसनों सुनोगे आप जी के तन मन में ठंडक पैदा हो जाएगी और गुरु की बख्शिश और समय का यह निचोड़ होगा। शब्द सारे माई भाई बड़े प्यार नाल टिक के सुनांगे ता इहदा ज्यादा लाभ होगा।

उस वेले वो अकाल पुरख किसे ना किसे ने इस संसार ते भेजता। कल युग विच जद जुलम और पापा दी अत हुई धरती ने पुकार की थी ता उस वेले उस अकाल पुरख ने सुनी पुकार दातार प्रभु गुरु नानक जग माहे बठाया। इस संसार विच तन गुरु नानक साहब प्रगट होए और सब तो वड़ा काम ये कीता चार वर्ण खत्री ब्राह्मण शूद वैस चारा ने एक जगह इकट्ठिया कीता और ये उपदेश कीता ये जाता पाता इंसान दिया बनाईया हैं। सानू सारिया नू बनान वाला एक परमेश्वर है। आओ फिर एक जगह बह के उसका सिमरन करिए। तन गुरु नानक साहब का अवतार होया देवी देवतें अपछरा खुशी दे गीत गाए। आओ फिर इस खुशी दे मौके आपां भी तन गुरु नानक साहब की पवित्र मिठी याद विच ए शब्द गा के रसना पवित्र करिए।

मैं सारे संसार में जाके वरतावा और संसार दे दो तेरा नाम जप के तेरे विच अभेदता प्राप्त करन। उस वेले गुरु नानक नू करता पुरख वाहिगुरु ने एक खजाना बख्शिश किया, ऐसा अमूल खजाना ज्यो ज्यो इस नू खाओ खर्चो ये वधदा जांदा है। गुरबाणी का खजाना, नाम का खजाना, और फिर इस खजाने दे विच कदे तो

सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लोसे आकार, सच्चे तेरे करने सर विचार, सच्चा तेरा अमृतचा दीवान, सच्चा तेरा उत्कृष्टा प्रमाण, सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान, सच्चे तुद आखे लख करोड़, सच्चा है सबदान, सच्चा है सब जोर, सच्ची तेरी सिफत, सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह, नानक सच तिहाइन सच।

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे सिंध संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा बेकार एक होंदा खाए चले अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार कोई जी आखे सुख है जाने तिलक तेरी सार नानक भगता पुख सलान सच नाम आधार।

ठाकुर हो गए दारू की इस माह है कृपा करे जी अपनी ठाकुर का शब्द माह है नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेन की संतोखी जिन सच सच ते आया उन्नी बंदे पैर रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंधना।

तन फिटे फेड़ करेन मन लिखे चुरी भए तौलन को सच आईए सुच होवे ता सच पाए पौड़ी जित अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे बड़ियाई आपे ही कर्म कराएंदा वडो वडा वड मेतनी सिरे सिर तन ते लाएंदा नदर पट्टी जे करे सुल्ताना का कराएंदा कर मंगल

पहला दूजा एक नहीं आस की दूजा लगे जाए नानक आस काटिए सतगुरु समाए चंगे चंगा कर मन मंदे मंदा हो आस तू ए ना किए जे लिखे वरते सोए नानक दोवें कुड़ियां खाए ना खाई माए मोड़ी सिरा सुपाइए सो साहिब सदा संभालिए जुटी सकाली आपना साकाल बुरी क्यों गालिए मंदा मन किते दिल में नजर निहालिए जो साहिब नाल नहारिए।

करके अनाज लियांदा, लिया करके आप पकाया ते पका करके सारे साधुआं नू भोजन छकाया, पानी पिलाया ते उन्हां नू तृप्त कीता।

प्यार नाल, प्रेम नाल इतना सिमरन कीता कि मानो उस परमात्मा दी जोत नूं हरि मंदर दे विच टिका दिता। ते भाई साहब भाई गुरुदास जी कहिंदे ने जैसे सत मंदर कंचन के उसार दीने तैस

सतगुरु कहंदे ने इस मन को जन्म जन्म की मल लागी, ते जन्मा जन्मा दी मैल नाले मन काला भी हो गया, ते मैल नाल पारा भी हो।

जे तरना है भवजल तू ते मन भी सच्चा होवे ते जो तू मुख तू कमे ओ भी सच्ची होवे जो कुछ तेरे अंदर है ओही बाहर होवे ताके संसार नू ते तू खुश कर लेगा पर जद मन भी सच्चा होवेगा ते मुख विच भी सच बोलेगा ते फिर निरंकार भी सच्चा सच तेरी जेगा ओ सच दा उपाशक सच वंडन वाला सच दा प्रचार करन वाला नगरी नगरी ते द्वारे द्वारे भाई साहब भाई गुरदास कहंदे ने चढ़िया सोधन धरत लुकाई भाई मरदाने नू नाल लैके जगत दे मालिक कहन लगे मरदाने आ चल तैनू ऐसे इंसान नू मिलावा जेड़ा कम ता होर करदा लेकिन ओदे मन विच भाई मैं धर्म दा कम पिया करना मैं सच्चे नू रिझा लवांगा ते सच्चे नू रिझा के मैं शायद तर भी जावां।

विश्राम दी भी जरूरत नहीं, दो घड़ियां बहने गुरमुखा फिर असा चलते बनने, पर भोजन तो कर लो ना। आवेखो कई लोग ब्राह्मण ऋषि मुनि तपी भोजन पे करते ने, यथाशक्त सेवा भी करदा। ए आज नहीं, ए रोज ही ऐसा चलता है। सतगुरु कहन लगे भाई फिर तो तेन कोई तगड़ी कमाई होवेगी, की कम करते हो तुसी? जिस वेले आखिया ना की कम करते हो, कदे अपने वाल वेंदा है, कदे बाबे वाल वेंदा है।

चोर की हम परे न कोए, चोर किया चंगा क्यों होए। पर तू सच बोले है, असी खुश होए बाबा जी, खुश होए तो फिर मेरे घरों को खेते ना ना जाओ, दो प्रसादे छक लो। सतगुरु कहन लगे फिर कदे आवांगे ते छकांगे, हुण असी चलने हैं। पर जे तू चोरी ना करें ते चंगा, ए माड़ा काम है। कहन लगे बाबा एक होर मैं सच बोला, ए चोरी मेरे कोलू छुटनी कोई नहीं। एक होर मैं सच बोलदा, चोरी नहीं मैं छड़ सकता। सतगुरु कहन लगे ना छड़, पर तू सच बोलिया ना, सदा सच बोली, असी ते जा रहे हैं, वादा कर सच बोलेगा। हां बाबा मैं वादा करदा सच बोलांगा।

गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। सच बोली, गरीब मार ना करी ते लून खा के हराम ना करी। ए तीन बचन चेते रख, भाई करी जा चोरी जे तू नहीं मुड़ सकदा।

हैरान हो गया भी है ये की होया कोई चोर आया सब कुछ इकट्ठा करके उस तरह पंड बन के छड़ गया गल की सवेरे इलाके दे सारे बदमाश कट्ठे कर ले ते लगी मार पैन उन्हें सोचदा है एदा नां इतिहास ने भूमिया करके लिखे भूमिया सरदार जमीन भी बड़ी सी बाबे दा वचन चेते आ गया पे गरीब मार नहीं करनी ते सोचदा गरीब मार ते हो रही है भूमिया करे तू ते परे कोई होर जाके पेश हो गया पे राजन ए सारे नु छड़ दे मैं तेरा चोर भूमिया सरदार तू एक भी हो सकता है नहीं राजन मैं ही तेरा चोर हाँ कदे चोर भी को कहंदा मैं चोर हाँ ये गल की है सारा कुछ सुनाया भाई मैनू मेरा

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जालो ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांग तू फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांग्यो धन देत हो, कहूं

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देते हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेते हो। कतहु विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ तासों बपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत, कहूँ

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त फतेह गोविंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त। ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवण कर रहे हो ए लफज जेड़े सन

गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहने वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव दा जन्म जम्मू अते कश्मीर दी एक रियासत रजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर दी एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर रजौरी जिथे लक्ष्मण देव दा जन्म होया। इना दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिया लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नू मार सुटिया, पर ओ हिरनी गर्भवती सी। जदों हिरनी नू तीर मारिया हिरनी जड़ी सी मरी, उदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इना छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी, उदे मन ते अजेहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बने, उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बने, योग सिखिया ले, फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया, दखन महाराष्ट्र नादेड़ वाल तुर पिया, गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहन लग पिया, अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पिया। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना कर दिया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखां दे नाल घोड़िया ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधोदास दे आश्रम पहुंचे ते माधोदास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधोदास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधोदास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधोदास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहब ने कहा असा जिथे बहना सी बह गए हां, क्योंकि गुरु दे गौतक गुरु जान दे। उधर चेले जंगल विच भजे गए, माधोदास बैरागी नू जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरुष आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। ओदे चेहरे अगे किसे दी अखां नहीं हुंदियां। तां माधोदास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावे पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्हों पलंग तो थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल में बैठे हैं
पलंग नूं उल्टाण दी कोशिश कीती पर माधोदास बैरागी पलंग नूं उल्टा ना सकिया। जद माधोदास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते, पलंग ना उल्टा सकिया तां समझ गया कि मेरे पलंग ते जिहड़ा बैठा है वह कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधोदास बैरागी अपने आसन तो उठिया और ये देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया।